0: তৎপর নংশি টিক্রি মেস তিং চুপিকা দকসং ইজে রং সেবং রোল মা তং টুপাগু ফুলকানি ছুসলু সনজাজ গজে আকাশবাণী লেনে জুইন জিক তং ইন স্নাতো চুচো রিয়া ছাদুক কসতা আকাশবাণী দিল্লি নি সমাচার প্রভাত তং মর্নিং নিউজ সনজাত
1: অধিক পেড় লগায়ে ইস বারিশ আইয়ে জুড়ে ক্যাচ দ্য রেন অভিযান সে
2: নমস্কার आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: इंडिया एंड इंडोनेशिया आर वेरी क्लोज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स।
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
2: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है, इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
6: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं, 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं, 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जातीं। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at Under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
5: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samanavaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the Triple Gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome.

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Мен тоқ ланзыстан топагуны салканы и лубан санатат.

0: Ivo, Akashwani Lane, Kastengishran, this get Dolmanin, Nasulkun, Sanazat. Stojung, Yamrox, Escolon, Po Amiching, Yamrox, Las Concebut, Canelos, near Ringslang, Yamroxang, Delta Yotkan, Mindajeva, Sumgasang, Mang, Mitsinanga, Shuksoma, Spelten of Moltok, New Delhi Nanga, Yamrox, Lon Conce, Tuxlos, Napejara, Sunshazad, and Jiktan, Scujas, Amish, Lon Narenda, Modding, Stong Issues, Tarshigena, Tukane, Ilon Conce, Yamrox, Las Caspo, Tusoma, Chisal Nansel, Zotab Soma, Chantang, Dandur Tang Tupkan Yote in Okmaltok, Lon Conce, Chaklas, Jupkan Gone, Tos Tugin, Jiktang, Las Kak, Assum Chunanga, Capsti, Yotkan, Yamrox, Tsospa, Boom, get down, stung up, chung up, get down, chiva, sum to sognis, jenny, tusmi guni, digital database, just the yoten of Moltok, lonpe, primary agriculture, get it, pexi, laska, skola, shada, zateno, ibo, common service center, gun, guti, japstok, sunga, sang, manga, len, tupjes yoten of molenjik, isukmalazats.
1: हमने कृषि ऋण डेयरी उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है भंडारण

0: लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है। आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम करे, मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं, 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं, 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं, 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: Shilun Narendra Modi Dring Jakarta Nanga Indonesia Shichin Prabau Sabineto Tangyam Pua Spon bochen mo gunel dane tsospa tsoste gel kamniske pare deldu se thoga skajip tang somal la sirige ka sungdo zatse senok goshkong niske cooperation las kha ga nang gel kamniske dotpa nang sin yar ke tang ses la chadone ik chika chakstak sa zatse se zat go nang thu sa zatse senok shelo narendra modi indonesia shetjine don chore ka jakma sume indonesia zikskor la dang pitoga jakarta alips denok Travel e tonsan skori lon khung se gel khabel dane jakma nisi lastajik Travel Research Institute TRIS gun maastan po chuches la Odisha Bhubaneswar nanga diring ne phala gozuk chachesino e last gozuk standard travel e tonsan skori lon po jewel orame jachesino e degree me nanga minda ngibgya laksame khakka lenin jiktang enok ejat go scaps la travel eton san lon khungstang sampun anand sanskrit vishwavidyalaya varanasi niske pala chatune ichha jige ka chakstag jaje se chodeno Central Bureau of Investigation CBI Border Road Organization na news pe chulla pe ne kolkhantang delte galkhani gabgala case chukste yot khantang delte galkhaptang ujungas de nasa ni shuster klongche sella sergik shulte no e galkhaptang ujungas de gun Jammu Kachul Ladakh Delhi Haryana Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Assam, Arunachal Pradesh, Tang Nagaland, Kunthe Denok, E Longche Se Lasser Chultus, Shugutang Digital Spangpo Mangpo Jigang Thops Denok, E Timsgal Tang Delte Lieutenant, Colonel, Major Tang Engineer Thete Sponbos Chutang, Zgere Mirgi Gabgalla, FIR Chukste Yot Khane Nanga Ming Yot Denok. Akashwani legyote ladak se nasul ngimena lanji Sanchez la pulinjik tangyo deyang san kan langas la in nasul gunshchi sosdarge platform sosugyote deyang Sanchez la pulinjik tangyo Akashwani leni ta nasul ton.

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: ngaji akashwani lene jun jiktain kasata khati jabanu salkane lurek sanajat

dakhsangi jarange khatija banwe salkane lure asanajaj medium wave kilohertz chikstong apchung aksum yangna meters nibya gyachu kyabji tang chuzurgu yang fm megahertz gyanang chik tang chuzur chege kangaje akashwani line jun jik tangin sngato chuchot orgunang pechadu kasata chuchot chuchukpa film lure asanajadin inanga smolla lata mangeshkar tang mahinder kapoor ne प्यार किए जा फिल्म लो सनजत लूर सुमकन राजेंद्र कृष्ण यंग लुयंग सिकन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दखसंगी जरंगे बेमिसाल फिल्मेलू लता मंगेशकर किशोर कुमार तंग सुरेश वाडकर ने सनाजत लूर सुमकन इन पिन आनंद बख्शी यंग लुयंग श्रीकन राहुल देव बर्मन फिल्मेलवी डिग्री में नंगा कसता वीरू दादा फिल्मेलू सनाजत लूर सुमकन आनंद बख्शी यंग लुयंग श्रीकन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल

फिल्म में लुई डिग्री में नंगा का सता लता मंगेशकर ने चुपके चुपके फिल्म में लु सनाजत लूर चुमकन आनंद बख्शी यंग लु यंग श्रीकन एस जी बर्मन

फिल्मेलु डिग्रीमे स्तिङ जुकपेका कसता पडोसन फिल्मेलु लता मंगेशकर तंग ठोपागुन्ने सनाजत लुर सोमकन राजेन्द्र कृष्ण यंग लुयंग सेकन आरडी बर्मन।

0: दक्षिणी जरंगे फिलेमेलु रे असना जज ngaje akashwani lene juin chik tangin snato chuso chu chadu kasata nime chuso chukmi supa akashwani delhi ne fm gold delhi tikrim gun sanaja
1: akashwani samachar ke sath main sir firozi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने पीओजेके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता रविवार को तेज हो गई। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों से गोलाबारी और झड़पों की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीब

0: रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएगी। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी F-38 का जलावतरण करेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के तटीय और घाटी क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है। पालघर, रायगढ़ और नासिक तथा पुणे के घाटी क्षेत्रों के लिए मंगलवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto are currently holding the bilateral meeting at Presidential Palace in Jakarta, Indonesia. Earlier, Prime Minister Modi received a grand ceremonial welcome at the Presidential Palace in Jakarta, marking the beginning of his official engagements. Indonesian President Subianto and Prime Minister Modi introduced the members of their respective delegations to each other at the Presidential Palace, underscoring the spirit of friendship and cooperation between the two nations. Prime Minister Modi also signed guest book at Istana Merdeka, the Presidential Palace. As Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit the iconic Prambanan Temple tomorrow, the UNESCO World Heritage Site continues to attract tourists from across the globe. Renowned for its magnificent 9th century Hindu architecture, the temple stands as one of Indonesia's most celebrated cultural landmarks. Dedicated to Shiva, Vishnu and Brahma, Prambanan Temple reflects the centuries-old cultural and civilizational links between India and Indonesia. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said, "The ministry, established by Prime Minister Narendra Modi in 2021, has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive." The 6th batch of pilgrims for the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra was flagged off from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu early this morning amid tight security arrangements. Akashwani Jammu correspondent reports that a total of 8,815 pilgrims left for the holy cave shrine in Kashmir. The smooth movement of yatris, a total of 363 vehicles were deployed. The yatra convoy moved under elaborate security cover with escort arrangements by police, CRPF and other security agencies to ensure the safe passage of pilgrims on both routes. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on 9th of July if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. Indian equity benchmark indices traded higher this morning amid positive global cues and crude oil prices hovering around the $70 a barrel mark. Sensex jumped over 200 points to hit an intraday high of 78,504 in early trade, while Nifty was trading around 60 points higher at 24,488. Sectorally, IT, banking and financial stocks led the gains. In men's cricket, India will take on host England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper, Shreyas Iyer, is yet to register first win under his captaincy. England, on the other hand, have named an unchanged playing 11 for the third T20 international. In football, Belgium defeated United States 4-1 in the round of 16 clash to secure their place in the quarterfinals of FIFA World Cup in Seattle. Belgium will now face Spain in the quarterfinals at the Los Angeles Stadium on Friday. Earlier, Spain stormed into the quarterfinals beating Portugal 1-0 in the round of 16 clash at the Dallas Stadium last night. Meanwhile, Portugal's superstar Cristiano Ronaldo has announced he won't be returning for the next FIFA World Cup following his nation's round of 16 exit. In another round of 16 clash of the day, defending champions Argentina will take on Egypt in Atlanta tonight. The match will kick off at 9:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. Akashvani se Vishu Darpan ke saath main Vishal Sharma. मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता में बातचीत जारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की आशा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते स्पेन और बेल्जियम फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में 5 मैचों की टी20 श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो इस समय जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया जो उनके आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत का प्रतीक है प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन इस्ताना मर्देका में अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए एक रिपोर्ट
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से रक्षा व्यापार ऊर्जा खाद्य सुरक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है इस वार्ता से भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी
4: India and Indonesia are very close and strategic partners.
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी
4: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की डॉ जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें

0: धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती।
1: जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने POK के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता तेज हो गई है। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 600 से अधिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी के नेता नमरिन एनखबियार ने भारत समर्थित दोर्नोगोवी तेल शोधन संयंत्र परियोजना के निर्माण में हुई प्रगति की सराहना की है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की ऋण सीमा के समर्थन से कार्यान्वित की जा रही मंगोल तेल रिफाइनरी परियोजना मंगोलिया की सतत ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण घटक और प्रमुख पहलू है। मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारतीय राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे ने मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति के साथ दोर्नोगोवी स्थित तेल शोधन संयंत्र परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया और इंजीनियर्स इंडिया, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा मंगोल रिफाइनरी के इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत की। दूतावास ने बताया कि मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति ने इस विशाल परियोजना के निर्माण में हुई प्रगति की सराहना की। दूतावास ने कहा कि ये परियोजना भारत मंगोलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी तथा मंगोलिया को सतत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वेनेजुएला में आए 2 भूकंपों से क्षति 37 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है। इस आंकड़े में घरों, व्यवसायों, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक सुविधाओं सहित इमारतों को हुए नुकसान का लगभग 24 अरब अमेरिकी डॉलर और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का 13 अरब अमेरिकी डॉलर शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी वेनेजुएला सरकार के समन्वय से भूकंप प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया कि इस आपदा में सबसे अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। यूनिसेफ ने आपातकालीन टीमें तैनात की हैं और चिकित्सा सामग्री, पानी तथा स्वच्छता उपकरण और आवश्यक घरेलू सामान सहित 68 टन आपूर्ति भेजी है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत ने 184 अंक के साथ उप विजेता का स्थान हासिल किया जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में बेल्जियम ने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में स्पेन से खेलेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता में बातचीत जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की आशा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। स्पेन और बेल्जियम फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और क्रिकेट में 5 मैचों की T20 श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good morning, this is Akashwani. I am VC Pramod with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holding talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. External Affairs Minister S. Jayashankar and Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa discuss ways to further strengthen bilateral partnership. Pakistan occupied Jammu and Kashmir. Protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And in men's cricket, India to take on hosts England in third T20 international of 5-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto are currently holding the bilateral meeting at Presidential Palace in Jakarta, Indonesia. Earlier, Prime Minister Modi received a grand ceremonial welcome at the Presidential Palace in Jakarta, marking the beginning of his official engagements. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samana Vaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sundip Chakraborty, said major announcements expected across defense, maritime security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
4: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in 5 sectors. One would of course be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals and of course educational and health sectors.
3: Indonesia is the first stop of Prime Minister Modi's 3-nation tour, which will also include visit to Australia and New Zealand later this week. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Jakarta.
2: as Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit the iconic Prambanan Temple tomorrow, the UNESCO World Heritage Site continues to attract tourists from across the globe. Renowned for its magnificent 9th

नमस्कार, वापस आ गई हूँ मैं अगले आधे घंटे तक इस महफिल की होस्ट और आपकी पक्की वाली दोस्त। ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो को एंजॉय करने का, जिसका नाम है दिल का मेल बॉक्स। एक ऐसा बॉक्स जहाँ आपके ईमेल्स और मैसेजेस के जरिए धड़कते हैं आपके जज्बात और आपकी पसंद के खूबसूरत ट्रैक्स भी।

तो देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दी से लिख भेजना है अपना नाम, कहाँ से लिख रहे हैं और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, साथ ही शेरो शायरी या फिर कुछ ऐसी बात जो आप सबसे कहना चाहते हो, वो भी आपको लिखकर भेजनी है। और बात सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं होती जनाब, थोड़ी मेहनत और करनी है आपको और लिख भेजनी है उस गीत के बोल जिसकी रिकॉर्डिंग के वक्त किशोर दा ने चबाया था बनारसी पान। क्यों उन्होंने ऐसा किया था अगर आप जानते हैं तो वो कारण भी लिख भेजिएगा। और फिलहाल सुनिएगा प्रोग्राम का ये पहला सॉन्ग जिसकी फरमाइश हमें भेजी है धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार ने भोपालगढ़ राजस्थान से। बेहद खूबसूरत गीत है ये, फिल्म है चिराग और मीठी आवाज लता मंगेशकर जी की।

गेस्ट नाज जी, हमें नाज है आप पर, आप आई तो सही। नमस्कार। फिल्म मेरा साया से कोई भी पसंद का गीत आप सुना दीजिए और संदेश हमारा जरूर पढ़ दीजिएगा। ये रिक्वेस्ट भेजी है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन ने सीधा चंडीगढ़ से। राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना इनके साथ शामिल है। और याद दिला दूं आपको आज का सवाल भी जो मैंने आपसे पूछा है। आपको बताने हैं उस गीत के बोल जिसे गाते हुए, जिस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त किशोर दा ने चबाया था, बल्कि चबाया था नहीं, चबाए थे बनारसी पान। और चलिए अब रुक कर लेते हैं आपके ईमेल्स का, जिसमें आप ढेर सारा प्यार तो भेज ही रहे हैं, साथ ही अगर कुछ शेरो शायरी या कुछ अच्छी सी बात आ जाए तो क्या बात हो, है ना। चलिए ढूंढ रही हूं मैं एक ऐसा ही कोई मैसेज। सवाल के जवाब लगातार मिल रहे हैं लेकिन शेरो शायरी मुझे कहीं नजर नहीं।

अरे क्या बात है, आज थोड़ा सा लेट हो गए लग रहा है आप। चलिए कोई बात नहीं, भारत भूषण जी का मैसेज पढ़ लेते हैं। शायरी भी लिखी हुई है, लिख रहे हैं, FM गोल्ड के प्यार का मारा हुआ हूँ मैं, सिकंदर हूँ पर हारा हुआ हूँ मैं, पता नहीं क्यों लोग कुछ जलने लगे हैं मुझसे, जब से उनकी आंखों का तारा हुआ हूँ मैं। दुर्गेश जी का ये मैसेज, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष इसमें शामिल है, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आया है ये मैसेज हमारे पास सीधा। चलिए अगला मैसेज शामिल करते हैं अनिल मोहन जी का, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से लिखा है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक इसमें शामिल है, एनी सॉन्ग, कोई भी प्यारा सा सॉन्ग सुनने की इनकी इच्छा है, जिसे हम अब से कुछ ही देर में पूरा करेंगे। और अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं, चलिए स्वर्ण सिंह गिल का मैसेज मुझे नजर आया है, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरुलाल सिंह, अविराज सिंह और पोत्रे गुरुनूर सिंह और शुभदीप सिंह इनके साथ शामिल हैं। बहुत ही खूबसूरत गाने की इन्होंने फरमाइश लिखकर भेजी है, जिसे हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। और फिलहाल हम एक मैसेज और शामिल कर लेते हैं जल्दी से अगला गाना सुनने से पहले। तो हमारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, गर्मी की तपिश से जूझ रहे थे, तभी घटा सी आई और FM गोल्ड लगाया तो पता चला कि नाज आई है, इसलिए कुदरत ने मौसम में नरमी लाई है। शुक्रिया नाज जी, आपने पहला तो मेल छोड़ दिया और बाकियों से पहले शामिल कर लीजिएगा, शायद ये लिखना चाह रहे हैं। सईद अब्बासी साहब का ये मैसेज है, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से आया है सीधे, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी और फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के सभी सदस्य इस मैसेज में शामिल हैं। और अगले गाने की फरमाइश में कौन कौन शामिल है अब ये भी जान लीजिए, सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग, सहारनपुर चंद्र नगर से आई है हमारे पास एक बेहद ही खूबसूरत गाने की फरमाइश। तो चलिए हम सभी मिलकर एंजॉय करते हैं इसे।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

खर्च हो रही है जिंदगी, आजकल हिसाब रहता नहीं कि कितने गम खरीदे हैं खुशियां समझकर, कितने लम्हे बेच दिए मामूली समझकर। ये मन भारी सा रहता है और जेब हल्की हल्की, कब कमाएंगे उतना कि जितनी खर्च हो रही जिंदगी। ये खूबसूरत लाइनें हमें लिखकर भेजी हैं सीधा हल्द्वानी उत्तराखंड से कृतिका जोशी, रोहित जोशी और राघव जोशी ने, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ईमेल के लिए। और चलिए अब अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं जो कि सीधा आया है हमारे पास चंडीगढ़ सिटी से। लिखते हैं, मॉनसून ने दस्तक दे दी है, मौसम भी हुआ खुशगवार, नाज बहना का इस्तकबाल करने तैयार है अनेजा परिवार। क्या बात है, दिलकश होंगी बातें, कुछ मस्ती और नगमे होंगे बाकमाल। पिंजरा ईमेल का खुलने से पहले होगा एक उम्दा सा सवाल, शिद्दत से करते मोहब्बत गोल्ड से दिल में आदर सत्कार, सिर्फ नगमों गीतों की बात नहीं यहाँ मिलता प्यार बेशुमार। ईमेल की बारिश और मानसून की बारिश से सुर सजेंगे, माउस पे रख लिया हाथ नाज बहना ने तो अब गीत बजेंगे। लाजवाब होती पेशकश, होता वखरा बहन का स्टाइल, नाज बहना आपकी मोहब्बतों से हर चेहरे पे छाए स्माइल। क्या बात है, सतीश अनेजा जी का ये मैसेज आया है विमला अनेजा जी के साथ सीधा चंडीगढ़ सिटी से। अच्छा एक बात मैं यहाँ पर बोल दूँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप मेरी तारीफ ही लिखें और तभी आपके ईमेल्स शामिल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस कुछ भी अच्छा सा लिखकर भेज दीजिए, मैं आपका ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज जरूर जरूर जरूर शामिल करूंगी, ये मेरी पूरी कोशिश है। चलिए उससे पहले आपको आज का सवाल याद दिला देती हूँ। मैंने आपसे पूछा है कि वो कौन सा गाना है जिसे गाते हुए ओरिजिनैलिटी को बरकरार रखने के लिए, ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने के लिए किशोर दाने चबाए थे एक नहीं बल्कि दर्जनों बनारसी पान, कौन सा है वो गाना, जल्दी से लिखकर भेजिए। वैसे आप लिखकर भेज रहे हैं और प्रोग्राम जब खत्म होने वाला होगा ना तब वो सभी नाम में शामिल भी करूंगी, चिंता मत कीजिएगा। चलिए अगला मैसेज शामिल करते हैं। सत प्रकाश सनूठिया जी ने लिखकर भेजा है रोहिणी दिल्ली से कि जिंदगी एक बहती नदी है, बस बहते जाना है। जिंदगी एक बहती नदी है, बस बहते जाना है। कभी मिलेगी धूप यहाँ, कभी छांव को पाना है। हर मोड़ पर नए मुसाफिर, नई कहानियां होंगी। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे कदम बढ़ाना है। क्या बात है, जोश से लबरेज ये लाइनें एसपी गोयल साहब ने लिखी हैं, सतप्रकाश सनूठिया, जैसा कि मैंने पहले बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। चलिए अगला मैसेज हम शामिल करते हैं जल्दी से। मल्होत्रा टीडी, टीडी मल्होत्रा इनका नाम है, सेक्टर 67, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखा है ये मैसेज। ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप इनके साथ शामिल हैं। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत गाने की इन्होंने फरमाइश लिखकर भेजी है। चलिए अगला मैसेज हम किसका शामिल करेंगे। आपको पता है तुम्हारी और हमारी मुस्कान में फर्क क्या है, तुम खुश होकर मुस्कुराते हो तो हम तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। ये खूबसूरत मैसेज लिखकर भेजा है बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल और कमला रानी ने उत्तम नगर

दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मैसेजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं, जिनमें से मेरे सामने खुल चुका है रामगढ़ कैंट से आया हुआ मैसेज। महेंद्र मोदी ठाकुर साहब जी ने लिखा है ये मैसेज और एक बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश भी हमसे की है इन्होंने। और एक और मैसेज है परवेज आलम जी का, लिख रहे हैं कि हमारा गाना जरूर आप शामिल कर लीजिए, ग्राम बलमी सिरसिया जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार से ये मैसेज आया है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। तो चलिए प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे, चूंकि घड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही है तो अब मुझे बताना होगा आपको आज के सवाल का जवाब भी, साथ ही शामिल करने होंगे वो सभी नाम भी जिन्होंने भेजा होगा आज के सवाल का सही जवाब। तो जनाब किशोर दाने एक नहीं बल्कि एक दर्जन बनारसी पान स्टूडियो में मंगवाए थे जब वो रिकॉर्डिंग करने पहुंचे थे फिल्म डॉन के बेहद मशहूर गाने को। जी हाँ, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, यही था वो गाना। गाने के मूड और उसकी लिरिक्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड होना चाहते थे किशोरदा और ऐसा उन्होंने सचमुच कर दिखाया था। फिल्म थी साल 1978 में आई डॉन, जिसके लिए गाना लिखा भी नहीं गया था। संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने गीतकार अनजान की कलम से निकले इस गाने को असल में साल 1973 में आई फिल्म बनारसी बाबू के लिए तैयार किया था, लेकिन देवानंद जी के एतराज के बाद ये गाना उस फिल्म में नहीं लिया गया। और फिर ठीक 5 साल बाद मनोज कुमार जी के सुझाव पर इस गाने को डॉन फिल्म में जगह मिली और उसके बाद तो ये गाना हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। बिल्कुल यही और सही बोल किस किस ने लिखकर भेजे हैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती बल्ली मारन से, रामकुमार पलवल से और राम ऑप्टिकल पलवल, शायद यही इन्होंने अपना नाम लिखा है। इसके अलावा मालियान सरधाना मेरठ, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन के साथ इन्होंने भी भेजा आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। और कहां कहां से आया आज के सवाल का जवाब जल्दी से देख लेते हैं। एक मैसेज मुझे बड़ा अच्छा नजर आया है, लिखा है कि जिसका जैसा चरित्र होता है ना उसका वैसा ही मित्र होता है, शुद्धता होती है विचारों में तो आदमी पवित्र हो जाता है, फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं, बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात लिखी है जयराम खोरवाल जी ने। सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल के साथ दीपांशु खोरवाल भी इसमें शामिल है और एक फरमाइशी गीत भी लिखकर इन्होंने भेज दिया है। और चलिए जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि किस किस ने दिया आज के सवाल का सही जवाब, वो मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि आपके ईमेल्स खो गए हैं मुझसे, उसके लिए माफी चाहती हूँ। दीपू, विकी, पूनाराम, यश, आराध्या न्यू दिल्ली रघुबीर नगर से इन्होंने भी फरमाइशी गीत लिखकर भेज दिया है। और सवाल का जवाब, जी हाँ, जयराम खोरवाल जी ने भी लिखकर भेज दिया है, बाबन कुमार दास जी ने भी लिखकर भेज दिया है, परवीन कुमार विलेज रोनिया खीजर सराई गया बिहार से आया है ये जवाब। और इसके साथ ही आ गया है फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का भी

में हंस के गले लग जाना, सहेली के बिना ये हुनर कहाँ, माफी मांगे बिना माफ कर जाना। खून के रिश्ते तो खुदा बनाता है, पर सहेली का रिश्ता दुआ से बनता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और जैसे कि मैं कहती हूँ, मैं हूँ नाज, आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त, यानी आपकी पक्की वाली सहेली भी हूँ मैं। शमशुल खान, अनुराज बेनारा और अनु बरजातिया जी ने ये खूबसूरत मैसेज लिखा मुंबई से। और चलिए अब सुने हम वो आइकॉनिक सॉन्ग जो था आज के सवाल का जवाब। है हमारे पास एक दो मिनट और, तो हम और मैसेजेस शामिल कर सकते हैं। राजस्थान से नासिर लजवान, माहिर लजवान, आरिफ अली, मेहर नूर ने भी भेज दिया है आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। और बबन कुमार दास जी का भी आ गया है बिल्कुल सही जवाब। इसके साथ ही नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से अपनी फरमाइश लिखकर इन्होंने भेजी है। और किस किस का आया है सही जवाब, मैं जल्दी से ढूंढ रही हूँ ताकि आप मुझसे नाराज ना हो। आफ्ताब अंसारी जी का मैसेज आया है और सही जवाब के साथ साथ अपनी फरमाइश भी लिखकर भेजी है। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी इनके साथ शामिल हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिन्मय महतो जी ने भी कर दिया है मैसेज और लिख रहे हैं कि नमस्कार दीदी, जिनकी नजर लक्ष्य पर होती है वो हर पल खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कदमा जमशेदपुर, चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल के साथ और आज के सवाल का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है। और हम सुने अगला गाना, उससे पहले चलिए एक मैसेज और शामिल कर लेते हैं। बबलेश पवार जी का है ये मैसेज, जिसे मैं शायद पहले शामिल कर चुकी हूं या नहीं, कोई बात नहीं। आज के सवाल का सही जवाब इन्होंने शायद अभी दोबारा लिखकर भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फूल गवाह है कि अक्सर तोड़े वही जाते हैं जो अच्छे होते हैं। बड़े बेबस होते हैं वो लोग जो झूठे नहीं होते, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए सच भी नहीं बोलते। एहसासों की नमी का होना जरूरी है। हर रिश्ते में रेत सूखी हो तो हाथों से फिसल ही जाती है। बहुत खूबसूरत बात। सईद अब्बासी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए। चलिए अब घड़ी जोर जोर से कह रही है कि भाई सुना दो वो गाना जो कि है इतना खूबसूरत, और उस पर थोड़े बहुत ठुमके लगाना तो बनता ही है। तो चलिए खड़े हो जाइए जहां भी बैठे हैं और चबाइए पान अगर आसपास है तो, और

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा सहयोग, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, कृषि, आपदा प्रबंधन और खनिज तथा इस्पात आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में हस्ताक्षर हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय बैठक की। वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
1: India and Indonesia are very close and strategic partners.
2: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान

0: सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्ट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press meet in Jakarta, Indonesian President Prabowo Subianto announced that Indonesia has conferred its highest honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, upon Prime Minister Narendra Modi. We now go over live to the Prime Minister's address.
0: और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। फ्रेंड, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं।
2: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said the ministry established by Prime Minister Modi in 2021 has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive. The sixth batch of pilgrims for the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra was flagged off from the Bhagavati Nagar base camp in Jammu early this morning amid tight security arrangements. Akashwani Jammu correspondent reports that a total of 8,815 pilgrims left for the holy cave shrine in Kashmir. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, the Jammu and Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July, if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. In men's cricket, India will take on host England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper, Shreyas Iyer, is yet to register first win under this captaincy. England, on the other hand, have named an unchanged playing 11 for the third T20 international. In football, Belgium defeated United States 4-1 in the round of 16 clash to secure their place in the quarterfinals of the FIFA World Cup in Seattle. Belgium will now face Spain in the quarterfinals at the Los Angeles Stadium on Friday. Earlier, Spain stormed into the quarterfinals, beating Portugal 1-0 in the round of 16 clash at the Dallas Stadium last night. 8 people were killed and some others missing after thunderstorms and gales brought by severe convective weather hit the eastern part of central China's Hubei province. According to provincial emergency management authorities, thunderstorms, strong winds and tornadoes struck several cities last evening. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today over parts of coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, parts of Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, interior Karnataka, Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim are also expected to experience heavy rainfall during the day. Light to moderate rainfall is also likely in places over Delhi, Haryana, Chandigarh, parts of Northeast India, Odisha, Punjab and Uttar Pradesh. And that is the end of this news bulletin.

Namaskar, suswagatam, assalamualaikum and have a grand welcome by me, aapki host aur ghumakkar dost, Naz. Tune kiya hua hai aapne Akashwani Delhi ka FM Gold channel on 100.1 megahertz aur jahan ke studio ki ghadi mein is waqt time hua hai 11:11:30 and as you already know ye samay hai sair sapate ka kyunki ye samay hai हमारी खास पेशकश तस्वीर का। और आज तस्वीर के कैनवस पर कहां के रंग बिखरने वाले हैं ये आप ही को गैस करना है और जल्दी से लिख भेजना है जगह का नाम विद ऑल प्यारी प्यारी बातें जो भी आप इस खूबसूरत जगह के बारे में जानते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप भेजेंगे 9868868753 पर और अब आपके लिए कुछ हिंट्स हिमाचल प्रदेश का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन जहां बर्फ से ढके पहाड़ देवदार के घने जंगल और वादियों की ताजी हवा आप महसूस करेंगे मेरे यानी नास के साथ लिटिल ल्हासा ऑफ इंडिया विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश या फिर स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया चाहे जिस नाम से आप इस जगह को जाने बट इन वन वर्ड Only heaven means swarg would be the best title for this place. Safar hai lamba, isliye baaton ka silsila rakhenge thoda chota aur shuru karenge sada bahar gaano ka karwan is behad khoobsurat track ke saath.

तो भाई बधाई के पात्र हैं आप कृष्ण कुमार गुप्ता जी और प्रकाश गोगिया जी, क्योंकि आप दोनों ने ही लिखकर भेजा बिल्कुल सही नाम जिस शहर की तस्वीर से आज हम रूबरू हो रहे हैं, और जिन्होंने भी शिमला लिखकर भेजा है माफ कीजिएगा थोड़ी सी गलती हो गई आपसे। मैंने आपको हिंट दिया था कि विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि शिमला तो नहीं है, जी हाँ धर्मशाला है वो खूबसूरत जगह जो कि हिमाचल प्रदेश का सरताज भी कहा जाता है और शीतकालीन राजधानी यानी विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश भी है यही शहर। तो कांगड़ा जिले की धौलाधार पर्वतमाला की तलहटी में बसी ये बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन है, और ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि असल में दो अलग अलग दुनियाओं का मेल है। नीचे लोअर धर्मशाला है तो ऊपर करीब 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसा है मैक्लोडगंज, जिसे लिटिल ल्हासा या फिर मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, और जो तिब्बतियन कल्चर और बौद्ध गुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। मौसम कौन सा बेस्ट है धर्मशाला आने के लिए वो हम जानेंगे जरूर। अगर ये सवाल आपके मन में है तो आपको बता दूं कि वैसे तो पूरे साल ही धर्मशाला का जो मौसम है वो बेहद सुहावना रहता है, लेकिन अगर आपको बर्फबारी को एंजॉय करना है तो आप आइए मार्च से जून के बीच, और अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बढ़िया स्नोफॉल तो धर्मशाला आपका स्वागत करता है दिसंबर से फरवरी के बीच। तो फिर चलिए धर्मशाला की ठंडी हवाओं को और करीब से महसूस करते हैं इस अगले तराने के साथ, और फिर जब वापस आएंगे तो जानेंगे धर्मशाला के अंदर की खूबसूरत डेस्टिनेशंस के बारे में।

तिब्बती प्रार्थना चक्रों की गूंज और मोमबत्तियों का वो धीमा उजाला, मैक्लोडगंज की हर एक गली ने जैसे दिल पर कोई जादू है कर डाला। भागसू के झरनों का वो गिरता पानी मन के हर मैल को धो देता है। इंसान अपनी सारी उलझने भूलकर इन वादियों में मानो खो सा जाता है। देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच जब सूरज की किरणें छन कर आती हैं, तो सूखी पत्तियां भी पैरों के नीचे आकर एक मधुर संगीत सुनाती हैं। ये सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, ये तो रूह को सुलाने का एक पालना है। खुदा ने फुर्सत से तराशा जिसे इस जमीन पर, उसका नाम धर्मशाला है। और अगर आप भी गवाह बनना चाहते हैं कुदरत की इस खूबसूरत कारीगरी का, तो रास्ता बेहद आसान है। हवाई सफर के लिए गग्गल एयरपोर्ट यहां से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। अगर ट्रेन से आना चाहें तो पठानकोट सबसे नजदीकी और बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां से आप टॉय ट्रेन या फिर टैक्सी ले सकते हैं धर्मशाला तक के लिए। बाय रोड अगर प्लान बने तो दिल्ली चंडीगढ़ से सीधी बसेस चलती हैं। अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पकड़िए NH503 का साथ और सीधा पहुंच जाइए। अंबाला, चंडीगढ़, कीरतपुर साहिब, ऊना और कांगड़ा होते हुए धर्मशाला।

रास्ते यहाँ के इतने खूबसूरत हैं कि आपको यकीनन इस सफर से प्यार हो ही जाएगा, जैसे इस अगले गाने में झलक रहा है। सुनिए और एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सफर धर्मशाला का मेरे यानी नाज के साथ।

0: पहचान है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जारी है तस्वीर जहां आप कर रहे हैं खूबसूरत धर्मशाला का सफर मेरे यानी नाज के साथ, और इस सफर को और मुकम्मल करने के लिए चलिए चलते हैं मैक्लोडगंज के विश्व प्रसिद्ध दलाई लामा मंदिर, जहां कदम रखते ही

एक अलग तरह का सुकून आप महसूस करेंगे और जो परम पावन दलाई लामा जी का निवास स्थान भी है, अंदर आप देखेंगे भगवान बुद्ध की 3 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमा और जरूर सैर कीजिएगा दलाई लामा जी के निजी मठ की भी, जिसका नाम है नामग्याल मठ। प्रेमिसेस के एंट्रेंस के ठीक पास में ही आप पाएंगे तिब्बत म्यूजियम भी, जहां तस्वीरों और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप तिब्बतियन हिस्ट्री से रूबरू हो सकते हैं। मंदिर के चारों ओर एक घुमावदार रास्ता है, जहां मंत्रोच्चारण और प्रार्थना चक्रों के साथ परिक्रमा करना मानसिक शांति पाने का एक सफल जरिया है। और फिलहाल एंजॉय कीजिए मेरे साथ ही अगला ट्रैक, जो भी जुड़ा है पर्वतों से और उनके पीछे है चंबे द गांव। धर्मशाला से क्या है रिश्ता इस गांव का, जानेंगे जब लौट कर आएंगे।

धर्मशाला के ठीक ऊपर जो बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ आप देखते हैं वो हिस्सा है धौलाधार पर्वत श्रृंखला के, और जिसके ठीक पीछे यानी दूसरी तरफ आपको नजर आएगी चंबा घाटी। जी हाँ, मशहूर ट्रैकिंग रूट इंद्रहार पास इन दोनों खूबसूरत जगहों को आपस में जोड़ता है, और जाहिर सी बात है कि इस गाने की शूटिंग भी यहीं यानी चंबा घाटी की खूबसूरत वादियों में ही हुई होगी। चलिए अब लौटते हैं धर्मशाला।

जहाँ ठहरने के लिए आपको आपके बजट के हिसाब से आराम से होटल्स या फिर होम स्टे मिल जाएगा। शहर के शोर शराबे से दूर बिल्कुल पहाड़ों की गोद में अगर आप रात की नींद से जागना चाहते हैं तो धर्मकोट या फिर नड्डी गांव को चुनिए, जहां सुबह की चाय जब पहाड़ों के पीछे से निकलते सूरज को देखते हुए आप पियेंगे ना, तो 101% इस सजेशन के लिए मुझे थैंक यू तो जरूर कहेंगे। आगे बढ़ें धर्मशाला के इस सफर पर, उससे पहले आइए ये गाना तो सुनते चलें।

कांगड़ा घाटी के साउथ में लगभग 30 किलोमीटर दूर और धर्मशाला से लगभग 56 किलोमीटर दूर आप पहुंचेंगे ज्वालाजी मंदिर, जहां साल भर तीर्थयात्रियों का जमावड़ा रहता है। माँ ज्वाला देवी को समर्पित 9 अनंत ज्वालाएं यहां पर जलती हैं। और खास बात एक ये भी है कि यहां इन ज्वालाओं से अलग कोई प्रतिमा आपको नजर नहीं आती। मान्यता है कि देवी मंदिर की पवित्र लपटों में रहती हैं और अपने भक्तों का भला करती हैं। नेचर लवर हैं आप तो जरूर आइए मैक्लोडगंज से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर भागसू वाटरफॉल, जो एकदम नेचुरल है और देखने में शानदार लगता है। और क्या कुछ है यहाँ यानी धर्मशाला में घूमने और एक्सपीरियंस करने के लिए मस्ट, आई विल टेल यू जस्ट आफ्टर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

शहर की इस अंधी दौड़ से थककर जब कदम यहां आते हैं, धर्मशाला की सर्द हवाओं में दिल के सारे जख्म भर जाते हैं। वो धौलाधार की ऊंची चोटियां जो बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हैं, उन्हें देखकर लगता है जैसे हम कुदरत के सबसे करीब खड़े हैं। चाय के हरे बागानों से उठती वो सौंधी सी खुशबू का झोंका दे जाता है थकी हुई जिंदगी को एक नया और हसीन मौका। यहाँ बादलों का पहाड़ों से मिलना एक अलग ही समा बांधता है। जो एक बार आ जाए यहाँ, वो फिर वापस कहाँ जाना चाहता है। और कहीं जाना भी नहीं है आपको, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर, जहां खूबसूरत धर्मशाला के हर रंग से रूबरू करवा रही हूं आपको मैं, यानी नाज। धर्मशाला आए और यहां की डल झील की सैर न करें तो जनाब मान लीजिएगा कि ये सफर अधूरा ही रह गया। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे, जरूर

जरूर ले चलेंगे आपको हरे भरे देवदार के जंगलों से घिरी लगभग 1775 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद डल झील। झील के पास ही मौजूद है शिव मंदिर भी, जो इस जगह को एक पवित्र स्थान बना देता है।

वॉर मेमोरियल भी धर्मशाला में देखने लायक खास जगहों में से एक है, जो कि चीड़ और देवदार के घने जंगलों के बीच मौजूद है और जहां मौजूद स्मारक की दीवारों पर शानदार नक्काशी के साथ शहीद जवानों के नाम आप पढ़ पाएंगे। इसके अलावा कांगड़ा से 32 किलोमीटर दूर मौजूद मसरूर रॉक कट मंदिर भी आपके लिए मौजूद है, जहां इंडो आर्यन शैली का बेहतरीन आर्किटेक्चर आप देखेंगे।

बेसिकली 15 रॉक कट मंदिरों का ये मेल है जो कि भगवान शिव, विष्णु, देवी और सौरा को समर्पित है। हिस्ट्री और नेचर लवर्स के लिए ये जगह वाकई किसी जन्नत से कम नहीं है। मैक्लोडगंज से 9 किलोमीटर दूर त्रियुंड भी आपके लिए एक बढ़िया डेस्टिनेशन है, जो आपको मून पीक और इंदिरा पास का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाती है। साथ ही पिकनिक मनाने के लिए आपको एक बढ़िया एनवायरनमेंट मुहैया करवाती है। सुनिए फिलहाल ये अगला ट्रैक, जिसके बाद मिटाएंगे अपनी भूख और प्यास धर्मशाला की स्पेशल और टेस्टी कुजीन के साथ।

और अब जैसा था आपसे वादा, चखेंगे साथ मिलकर धर्मशाला का खाना। तिब्बतियन और ऑथेंटिक हिमाचली या कांगड़ी कल्चर की झलक आपको यहाँ के खाने में मिलेगी, जिसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ मिलने वाली गर्मा गर्म मोमो की प्लेट तो आपको खानी ही है हर हाल में, साथ ही थुक्पा और शफाले भी, जो बेसिकली तिब्बतियन डिशेज ही हैं। हिमाचली स्वाद आप चखेंगे कांगड़ी धाम में, जो एक पारंपरिक थाली है यहाँ की और जिसे त्योहारों के मौकों पर पत्तलों पर परोसा जाता है। मदरा और माह की दाल आपको हिमाचल के स्वाद से रूबरू करवाएगी। साथ ही यहाँ मिलने वाली मशहूर बटर टी और हनी लेमन जिंजर टी को ऑर्डर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जनाब, क्योंकि ये धर्मशाला और हिमाचल की पहचान है। और मुझे ये पक्की उम्मीद है कि मेरे यानी नाज के साथ धर्मशाला का ये सफर आपने जरूर एंजॉय किया होगा। अपना एक्सपीरियंस और सुझाव जरूर शेयर कीजिएगा ईमेल या फिर व्हाट्सएप के जरिए। फिलहाल जाती हूँ मैं इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर होगी आपसे मुलाकात, ऐसे ही किसी नए शहर नई खूबसूरत तस्वीर के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए FM गोल्ड। नमस्कार।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए, किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए?
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
2: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
2: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।

0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओ, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी,
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सिखाती चींटी
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात?

0: तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please, Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please, Air India announces
3: the... Papa, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ आओ चलो।

0: तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
1: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
1: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है,

0: वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
1: कादिर, मम्मी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
0: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
1: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की मम्मी बनाई जाती थी?
0: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
1: ओ,
0: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
2: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
2: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
3: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
2: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
3: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
2: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
3: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
2: तो फिर चलिए।
3: हाँ तो आओ, चलो आओ, खादे आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।
1: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
0: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
0: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहली पूछो।
1: पूछिए।
0: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। बताओ कैसे?
1: हर साल पानी चढ़ता है।
0: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
0: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
0: हार गए?
1: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
0: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
0: देखिए, नील नदी में 2 नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की

0: प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी यह प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
3: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यहीं कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
1: पापा मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
1: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: Daksangay ja rangay NCERT jindag zatka nedigrim. Umangay kaag chikstong sumgyatang nishur chak nispa sanazaz.

0: ngaji akashwani lene jinjik tain nimi chutsu chik chadu kasata akashwani delhi ne smulla hindi yang testing ne angrezi na nasul sanajat
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत

0: भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिनतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, Mr. Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
2: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education. Expressing confidence in the future of bilateral ties, he said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today. The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high-quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honour, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event at the Istana Merdeka. Lok Sabha Speaker Om Birla and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar have congratulated Prime Minister Modi on being conferred Indonesia's Medal of Honour. President Draupadi Murmu unveiled and flagged off the trophies of Durand Cup Tournament 2026 in New Delhi today. Addressing the gathering, the President said this year new teams will compete to become the champions of the Durand Cup, the President's Cup and the Shimla Trophy, expressing happiness over the participation of the Sri Lankan team in this year's tournament. President Murmu said the inclusion of new teams would make this historic competition even more popular. The Gujarat High Court today upheld a special court order sentencing 38 convicts to death and 11 others to life imprisonment in the 2008 Ahmedabad serial blasts. A division bench of Justices A.Y. Kokje and Sameer Dave rejected all appeals against the order of the lower court and upheld its verdict confirming the sentences to members of the terror outfit Indian Mujahideen in the case. On July 26, 2008, a series of 21 bomb blasts ripped through Ahmedabad in a span of 70 minutes, killing 56 people and injuring 200 others. Some hospitals in the city were also targeted. A special court in 2022 sentenced 38 Indian Mujahideen members to death. The court had also sentenced 11 other convicts to life imprisonment. Mizoram's Natural History Museum has been notified as India's 21st designated repository under the Biological Diversity Act 2002. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the institution as a designated repository based on the recommendation of the National Biodiversity Authority. Designated repositories constitute an important component of India's biodiversity governance framework by preserving authenticated biological specimens. The political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. Benchmark domestic equity indices were trading in positive zone during the afternoon session today. The Sensex climbed 132 points to 78,417, while the Nifty advanced 33 points to 24,463 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: Medium wave 284.9 meters, yani 1053 kilohertz. और एफएम मेगाहर्ट्ज़ 101.1 पर ये आकाशवाणी ले की आवाज़ है। आइए सुनते हैं फौजीबाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

जय हिंद फौज भाइयों, इस वक्त के कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं कल हो ना हो फिल्म से इस गीत को सोनू निगम की आवाज़ में। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में हेलो ब्रदर फिल्म से। इस गीत को लिखा है सुधाकर शर्मा ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण को दिल है तुम्हारा फिल्म में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे चोरी चोरी छुपके छुपके फिल्म से गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में। अगला गीत लीजिए, सुनिए दिल का रिश्ता फिल्म से, आवाज़ें हैं कुमार सानू और उदित नारायण की, गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम श्रवण।

फिल्में गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में फौजी भाइयों सुनेंगे। गुलाम फिल्म से इस गीत को कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

0: हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। दिन के 1:50 हुआ जाता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें, मिड डे न्यूज और
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रम्बोवो सुबियांतो के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वजीर आजम को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिनतांग अदिपुरना से नवाजा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की। जनूब मगरबी मानसून शिमाली बहरे अरब, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात इंग्लैंड के शहर नॉटिंगम में तीसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ दोतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने और दोनों मुल्कों के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी को नई रफ्तार देने के लिए वफ्द की सतह की बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक उमूर में इश्तराक में मजीद इजाफे के मकसद से मुफाहमत नामों का तबादला भी किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी 2018 में कायम हुई थी और अब ये एक नए मरहले में दाखिल हो रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए बाहमी एतमाद से दिफा, सलामती और समंदरी शोबे में तआवुन को इस्तेहकाम मिला है और दोनों ममालिक ने दिफाई मैदान में तबादलों, कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक तआवुन और सनती इश्तराक को वसत देने से इत्तेफाक किया। जनाब मोदी ने कहा कि बहुत से शोबों में ये शराकतदारी आगे बढ़ रही है जिनमें तरक्की, सलामती, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम शामिल हैं। मुस्तकबिल में दोतरफा ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया शराकतदारी में एक सुनहरी बाब का आगाज हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक अहम मादनियात और स्टील के शोबों में सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाने की अहमियत से मुत्तफिक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों की कंपनियां स्टेनलेस स्टील और कमयाब जमीनी मकनातीस में नई शराकतदारी का आगाज कर रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत की यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया के अदायगी के निजाम से मजबूत हो जाएगी जिससे तिजारत और सफर में दोनों में ही मजीद सहूलत हो जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि वो कल योग्यकर्ता में सदर प्रबोवो सुबियांतो से मिलेंगे और 1000 साल से भी ज्यादा कदीम परमबनन मंदिर के तहफुजाती प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। उन्होंने इस मंदिर को भारत और इंडोनेशिया की मुश्तरका सकाफती विरासत की एक अलामत करार दिया। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि दोनों ममालिक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इंडोनेशिया के तारीखी दौरे की 7 साला तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। वजीर आजम ने इंडोनेशिया के पहले वजीर तालीम की हजर देवांतरा के तआवुन को याद किया और कहा कि उनका तालीमी फलसफा गुरुदेव टैगोर के नजरियात से गहरे तौर पर मुतासिर था।
2: हम दोनों देश गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहाँ के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज बितंग अदिपुरना से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें इस्ताना मर्देका में एक तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने किया। ये एजाज भारत और इंडोनेशिया के दरमियान अहम शराकत दारी को मुस्तकम करने और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने में वज़ीर-ए-आज़म के तआवुन के एतराफ़ के तौर पर दिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जमहूरिया इंडोनेशिया के मेडल ऑफ ऑनर बितंग आदिपुरना से नवाजा जाना सभी भारतीयों के लिए बड़े फख्र की बात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एजाज से नवाजा जाना भारत की जामे अहम शराकत दारी में गहराई लाने और भारत आसियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने की वजीर आजम मोदी की कोशिशों का सबूत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने

0: बरकरार रखा। 26 जुलाई 2008 को 21 सिलसिलेवार बम धमाकों से 70 मिनट तक पूरा अहमदाबाद शहर लरस कर रह गया था। इन धमाकों में 56 अफराद हलाक और 200 जख्मी हुए थे। इन धमाकों में शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था। 2022 में एक खसूसी अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के 38 अरकान को सजाए मौत सुनाई थी। अदालत ने 11 मुजरिमीन को सजाए उम्र कैद भी सुनाई थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों को आगाज किया। एतमाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इस साल ड्यूरन कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी हासिल करने के लिए नई टीमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी। इस साल के टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई टीमों के शामिल होने से इस तारीखी मुकाबले को मजीद शोहरत हासिल होगी।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: जम्मू और कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों का छठा जत्था आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने इत्तला दी है कि इस काफिले में मजमूई तौर पर 8,815 यात्री शामिल हैं जो कश्मीर में वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। वस्ती चीन के हुबेई सूबे के मशरकी हिस्से में एक खतरनाक तूफान से 8 अफराद हलाक और कुछ के लापता होने की खबर है। हंगामी हालात के दौरान बंदोबस्त की सूबाई अथॉरिटी के मुताबिक कई शहरों में कल शाम तूफान बारिश हुई और तेज हवाएं चली। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने बताया है कि शिमाल मगरबी मानसून के शिमाली बहिरे अरब, गुजरात के कुछ हिस्सों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाकी हिस्सों में अगले 3 दिन के अंदर मजीद आगे बढ़ने के हालात साजगार हैं। मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज शदीद बारिश होगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात नोटिंघम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 बैन अलावामी मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ वक्त की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वजीर आजम को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बितंग आदिपुरना से नवाजा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमों को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफी जारी की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव किलोहर्ट्ज़ अचुक स्तंगाप चुंगासुम यंग मीटर्स निबिया क्या चुगेब जीतांग शुजुर्गु यंग एफएम मेगाहर्ट्ज़ ग्यादांग चुक तांग शुजुर चिकिका नजी आकाशवाणी लेने जुन जिकताइन निमे चुजोत निज दांग पेट छादो गासाता चुजोत निज दांग स्कर मांगाप चुंगांगा चुपा लादक सिलोरिक सांचेस लपुलेन इना चामल सांसमुल्ला चिरिंग दोर्जिया सालका नेजुंग लोजिक सनाजात

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: Ibu Akashwani Lin Kastingishran Disket Dolmani Nasulgun Sanazat Shilun Narendra Modi Indonesia Chiwa Cheshus Bin Tang Adipurna Republic of Indonesia Tangyampua Indonesia Shichin Prabo Wei Subi Entwe Chiwa Pulte Inok Diring Gushkong Nishke Parla Sponbo Chinmo Gunil Dane Tsokspa Jik Tsoksa Jate Gagarta Indonesia Parla Delduk Sika Shitlo Ne Izukmola Jats
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है. हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं. मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा. हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है. आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई. अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे. हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है.
0: Lada Ujung as the Gamuli Argus Laskunse, Tonshi Nidhi Malike, Late and Gargil Zongunena, Swachh Bharat Mission Gramina, Sandra Charjitang Social Resource, Solid Resource Management Center, Tsukhti Yutkan Gunika, Laskunish Gajib Zajas, Latsospazi Buddha Zateno, Itsospena Ali, Gargil Tandra, Serzonsman Guntang, Jan Sponbogun, Tusazateno. Skep gun staklong kargu tsetul rinpo che skuting el gyatpe skui tunska tushen job gyatpa dang taklong culture and social welfare society taldige ka stishung zateno etus la d'argent segun pa tsokti tipa jun ba geshe tashi stospe geshe skempo dang piang himis dang tiksi gumpe gedun gun juxte yoteno etus la janan d'argent mangpo jigang skui tunska tushen et zat guna tusa zateno. Stojung Yamrox Escoilon po Amitche Yamrox Lon Concebut can a loch nirinsla Yamrox Tang Delte Yot can mean that Chiwa Sumchu Sang Mange Mitse Nanga Shook so much expelte in of Maltor New Delhi Nanga Yamrox Lon Conce Tsukslosh Nape Jara Sunshadzad in Jitang Scujabs Amitche Lon Narendra Modi Nistung issues Tarshigina Tsukskani Ilon Kungsbo Yamrox Lascare Na tu soma chisel na salchan, zotap soma chantang, dandur tang tupkan jigyote nok molto lon kungse, charlas dupkan guni, tos tuga zadin jigtang, laskar sumchinanga, capste yote inok molto yang inanga, nyamjoks tsokspa bum rgetang stong, ngabchungab getang, jiwa sumchus soknis jenny, tusmi guni, digital database, choste yote nok moltang, shadazate nok. Travelet tonsan skore lon khunse gelkha bel dane ka jakmani se last ajik travel research institute gunmar tan po choches la odishe bhumneshwar nanga dering ne phala gozuk song deno ilaste gozuk stendel travelet tonsan skore lon po jewel oram me jate ino. Central Bureau of Investigation, CBI Border Road Organization and Amius Petula Pene Kolkantang Delte Galkanguni case Jitang Delte Galkatang Ujungas de Nishus Zaruge Nanga Lungches Lasetulteno e Galkatang Ujungas de Guni Traja Mukachulada, Delhi, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Assam, Arunachal Pradesh, Tang Nagaland, Gunteteno, Yang Lungches Lasetultus, Shugutang Digital Spangpo Mangpojigang Topteno, Akashwani Lenita Nasultan.

0: हेलो जुले, या जुल कैसा? हेलो जुले नीले सुमलतेले या जिंगमेस कर्मा नोदन ले खमसाऊ जुक साले या जुन का नीले कजुक लुजिंग यांचे रगले या मैं उरुप नाम गया ले कजुक लुजिंगले या ले सपायो दाले लुसन कन सुसु योदले या जु थुजे छे नर्दन ले ngजा फोन साल चेजला तिनिंग जा रंग संग मेस ng आजत कन रूप नाम गे ले लु सन जा देले या जुले
1: जुले

0: हेलो जुले,
1: हेलो जुले नायला
0: कसा? हेलो जुले निले, सुमोस निले, या जो नुरबुले खमजा जुक साले
1: जुले ना खमजा ले इना गाजा जुले कनी लुई साला
0: कसा है? हम ठपा जुक स्तर दले
1: ठपा यो ले आंबियो बोचुबियो श्यारी दिनियो सिंह बोजे यो यां श्यारी दिनियो तने
0: कसा कसा
1: ओले कसा
0: या जो थुरे छे नुरबुले तो जो ना चोसला मजे डिग्री में ना थुरे से फे तने गे जरा संग में सा आजाद का ने लो सा ना जदेले
1: ओले जुले थुरे छे जना
0: या जुले।

0: ले
1: भाषा में कौन से बंदा मेरा
0: या
1: ले
0: जुले कौन चोले खमजा जुक सले
1: या खमजा जो सानी या थंग मंगा का दु खमजा ने ले जुले
0: या जु ngaya changma khamjang ele
1: या जुले जुले
0: या जु का समोल आजाद का जुक लुजी फेथुक ने सले
1: चारा मक्चुंग साला मैडम जू
0: या का सले ठोपा जुक स्टे दले
1: तोपा मेल ले जा सा
0: या
1: या जुले निजा थंग मा जुले
0: या जुले

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग अदिपुणा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मेपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon. Highlighting the growing partnership between the two nations, Mr. Modi said India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
1: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं यह संकल्प लेकर आया हूँ कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
2: Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President, Prime Minister Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector.
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
2: The two leaders agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Prime Minister Modi expressed gratitude for the award and dedicated it to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभो का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
2: In Kerala, three people were killed in a landslide at the tunnel construction site near Kalladi in Mepadi, Wayanad, following heavy rainfall today. Nine workers who were trapped underground were rescued and shifted to the Government Medical College Hospital, Mepadi. Six others remain missing and are feared trapped beneath the debris. Rescue operations are continuing with teams from the fire and rescue services and disaster response agencies. A sub-inspector of police from Mepadi also sustained injuries during the rescue operation and has been admitted to hospital. The Kerala State Disaster Management Authority said the collapse occurred when debris accumulated during the excavation for the tunnel construction site slid down. Work at the site had been suspended on Monday due to incessant rain. Vehicles at the site were also buried in the landslide. Wayanad has been experiencing heavy rainfall since yesterday. A red alert has been issued for Wayanad and Kozhikode districts. In FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on Egypt in round of 16 match in Atlanta tonight. Later in another round of 16 clash, Switzerland will face Colombia in Vancouver. Belgium defeated United States 4-1 in the round of 16 clash in Seattle to secure their place in the quarterfinals of the tournament. Belgium will now face Spain in the quarterfinals at the Los Angeles Stadium on Friday. And that is the end of this news bulletin.
3: ngaji akashwani lene shwinjiktain phido chotsot tuktans karmash chuchaduk kaseda jingpe sonska tekrem sanchesla palen tekrem pulkan deshke tolkar tekrem e kodiksatkan sonamanchuk

0: योदना देटुङ पड्गे जगा चिची का खुरी मना लाम थबिन सक्यात भात तेंजर काने सक्या चिक मैन मंग तंग युल संग मने मत पन पाला दिकना टुङ प तंग पेजिंग योदना देकन इंग पेजिंग देकन सुम पेजिंग ड्रेस येदन परो चाचिंग न ता थोरल जंग इमे जगा लुत खेरिन जे तनो ट्रैक्टरी न तो लम मि थप को जित पंगा सिबा जे न को सक्यात नि चोक्सिंग मत पसंग न डेल बनि जिगिन थम पसंग न ता दक्सा ko aji redla mata sanga med na sanga ni yok pa med na yok pa chen hale ram ba pchos ten me deta na pe pes ke che chen chus ke che chen ko tut pa thong to no me khong a chen der kan minu wale me tut met pa ta de del ba man story no ko je dik din le ya ta as kan soli don tan na sket kan mo met kan song sar hale cha din na po chirka ka ne hota le ta chi shu sala no santun sala no शिशु थोने झुकपना ट्रफ ट्रफ जानू मत छोड़ते बोट घना मैंने गेल टू जोल सौ पची गेल हिंगा बीस थोड़ा अड़ते डेढ़ चिकपी से चोस जोल यूंग दुआ जोल ना जोल छड़पायों से जोल नांग या कुरान चीज तुजला बाप से जोल चीज के नांग तेज पेरा सक तंकन दुकान मेत पतंग माना यूल बखरंग माना जिक सुन से जातु पर एक दिन तब दिन ना नंग दिन यूल इतने सबत पर हम बोले सिरका थंग मांस तोरे सुन चारुक ताले माने सिरका थंग मां दिन ये ना मोल तो ला गुंपा जा जी जी का नंग मांग ये दिन रुक माचे ले चीप ये जुना लोकल गुंपा से कत मां मांग पोनो पाले सिकत पसना दरु हम सोदे चाइनीस पेरा में जाते हो छराकले लोकल पास लोकल गुंपा छुन पाएंगे गेहोक ने दरु हम साल न साल जिन पाए तो गेहोक ने जन चीज रो दना गेहोक ने गुंपे का सोचते न इतना मे फुकन दंतांग शाम कानी गेहोक ने दक्षा साल ने माचेन निज ले ए वाला गेहोक दर्शन ले ता छुन पाएंगे जिंग चुकन या सतप चलु चुकन छुन पाएंगे तुम पर रेडिया जब मैं सुन गया टुक्की लो चिक चिक चा फोक चेन नॉन ले तुम पाएंगे ला दो दरु हम योदा जरे ना मुंगान ना योद पिन दक्षा मेट जरंग यंचा में चिप या जुना तो तू शिका माचे ना माता पिक जरे ले नियो माचे ना पो इन नम तेरे माचे देता ना गवर्नमेंट ना पेने या डिपॉजिट चिक चो से ना दे पेने भी का दरु हम मिंगबो निज लेकिन कौन पा कॉल आ जाते तो माचे ना गवर्नमेंट के सरकार दे मो दिया ता दो मिन बगेरा जरा चोगला Spidla lut ping chas, jing chu chas, jing mua cha chas, tene de singna shub chakse, olunga la cha cha, jing mua cha chas, kuyu a cha chas, ta kukumpa chi chab shi shi mingo, gindun ni jip tak na ran tak chua cha cha, tu yong chok pali. Ta de thang ma nyam song basang nara, ta gunu niske delba ozu ucha de charu gali. Ta spes na, jis chok ta kukumpa song se labra an song, chek thung zen nang, thungin mido kan su tukusik. Chip ya thungin roa minak, जन किंतु निचिलाब जन यूसित चाहिए ना पाई इन्नं मतलब ना देखा जब शिक्षित यूसित ना अलाला ना पाई मेरा कोई ता दक्षा दो तुक्सिया में पसंद ना ता गुली कोल पसंद ना दरुंग ता गाचा कोन्यो का दुकान मुन्ना सोचे जाने से पहले तो नो ता थोड़ा ला मन गुली चोले ना शगुत अप्पी जा पला शगल सुकान दे तो दे चुगा दे चिगा मुन्ना दरुंग मजो ना इंचा दो वादे कुली आयों कान नेपाल पाइन दो गजुकिन दो हाला ले या गाने क्यों दो नेपाल क्यों दे उन ला मजो न बसा वो तो रे लाज का चिगलू से तो दिख दिन ले या न्यंपो जुग पिकार पि लाख दिन दिख नो ताम चिक सोन जी का खेले दे लाख मा कुरी क्यों से तो लाख थांग तो से पि लाख थानो दरुंग जार को नि इंजरे नो पाइन आ नि ले आ ना सा पोरे पि लाख गोल गोल चोचा ला का जेजुक तारी खाए दे रोले दक्षा चीजा चिथुंग इतना थोड़ा लर जचा सिलोंग में क्या नाम ना कुलिक जो गार्ड जाए का डिप्टी इसके को तेज के दे मेट पसंद है रा इसके में इस पर आते जोक सीख दो कुछ दिन
1: ओले कैसे चल रहा है ओले क्यों पसंद आते ने दिन जलता जिप्सन लिंग अपो मेरा मोल जस तेरे लिखिर का म्यूल ना आता गुन पा ना आता थंडल का जोशी हो त्यूल पा ना आता वह तो शिया जिप्सी दसा चुक पा माने तेरे गल दोन द फला जून सिक्यो ते डेल गुन नियम से चाचा पचास सेम्बांग उसके मोचारुक जुआरा तेरे तना आता तेना चोला आता तेरे जूनू क्यों तो गुन साबादे छोआ टोआ मित कान जिक तेने यो हमार जिक से टोइन नस्यांग बोब ना सास्तेन जिस पर संगना तांग तेने चीज इक्जा देन नंग सास्तेन देवे निंगे ना मित क्या तेने जलता मोला लास कुजाब सिरिंग गुर्मेद लिकिन अस्के वजास निंगे ना जलता तुक्सम बो सबत पंगुन ला मोन चुगा जास सबत पर संग निंगे ना जाते सा ना जाते तेने लगलेन जा चासी रेबा चुन निंगे ना थुजे छे जिन जुरुन जुले
2: दक्षिण जिराई टिवटिलानी डिग्रीम बंग सनाजास इन्ना टिवटिलानी डिग्रीम तंग्यापो दिरिंगे जिंगपे सुंसका दे डिग्री में तुस्तो पसंदुक ना गोंस पसलाजा जुले
3: ई डिगिम्बो निजांग लंगेसला गेवा जुई सोना मिस्कोरे लोनकुसी चिंदाबजाते संचेसला फुलतेन पिन

Daksangisharang e chingpe sunska tikrim sanatats. Dikrim pul kanin pin deshke dolkar yang dikrim e kodik zet kanin pin sonamang chok. Medium wave 284.9 meters yani 1000 kilohertz aur FM 101.1 megahertz par hum Akashvani ke le kendr se bol rahe hain. Samay ho raha hai sham ke 6:40. लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम।

जय हिंद। स्वागत है हमारे प्यारे फौजी भाइयों का आज के इस वक्त के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में फौजी भाई सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में देवदास फिल्म से गीत। गीतकार हैं नुसरत बदर और संगीतकार इस्माइल दरबार।

आइए अगला गीत सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत के बोल हैं महबूब के और इसे संगीत से संवारा है इस्माइल दरबार ने।

फौजी भाई के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए। अगला गीत सुनिए शान और साधना सरगम की आवाज़ों में कुछ न कहो फिल्म से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को धुन से संवारा है शंकर आसान लॉय ने।

फौज विभाग के इस कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म सीखी, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर अजम और इंडोनेशिया के सदर के माबैन वफदी सतह की बातचीत, नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज से सरफराज। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ठाठरी डोडा में बादल फटने से पैदा शुदा सूरत हाल का लिया जायजा, मुतासर

0: D'accord, je rangais son nom, quel est celle que ni doglorik sanajats? Naja akashvani lenishwin chiktain sanishotot, ketans kalma jipjojan achaduk. Kasida akashvani dilene samajar sandhya news at 9 tang urdinan achulgun sanajat.
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
2: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
3: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए

0: वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांगी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
2: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
4: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आप

0: आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
4: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai. और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र है।
3: Here is more from a

0: Ayushi's report. Arjun Chowdhury for Akashvani News.
1: On to sports. In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. England defeated India by 4 wickets in the second T20 match on Saturday in Manchester. The first match was washed out due to rain. In the Wimbledon tennis, world number one and defending champion Jannik Sinner has stormed into men's singles semi-final, beating Jan Lennard Struff of Germany in London this evening. In women's singles, Coco Gauff advanced to the semi-finals, defeating fellow American Jessica Pegula in a thrilling quarter-final match. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on Egypt in the round of 16 match in Atlanta tonight. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. Later in another round of 16 clash, Switzerland will face Colombia in Vancouver at 1:30 a.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after a landslide hits Wayanad Tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India. And in men's cricket, India take on hosts England in the third T20 international of the five-match series in Nottingham tonight. That is all in the news at night. Good night.
2: Adab, ye Akashvani hai. खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली और जुनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 T20 मैचों की सीरीज का 3रा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की अमन इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वजीर आजम ने दिफा बहरी सलामती तिजारत डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने यूपीआई समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ ورکنگ گروپ طریقہ کار کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے لیے قریبی طور پر مل کر کام کر رہے ہیں.
4: آتنکواد جیسے وشیوں پر بھارت اور انڈونیشیا دونوں کی ایک رائے رہی ہے. پچھلے ورش پہلگام میں جب جدھنیہ آتنکوادی حملہ ہوا انڈونیشیا تب بھارت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا. میں اس کے لیے راشٹرپتی پربوو اور آپ سبھی کا آبھار ویکت کرتا ہوں. ہمارے دونوں دیش کاؤنٹر ٹیررزم پر جوائنٹ ورکنگ گروپ کے مادھیم سے ساتھ کام کر رہے ہیں.
2: بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتی معیشت عالمی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. آج شام انڈونیشیا کے جکارتا میں وہاں آباد بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حکومت ریفارم، پرفارم اور ٹرانسفارم کے منتر پر کام کر رہی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت ایک ارب سے زیادہ خوابوں کو پروان چڑھانے والا ملک ہے.
4: آج بھارت کی ارتھ ویوستھا دنیا کی گروتھ کو ڈرائیو کرنے میں بڑی بھومیکا نبھا رہی ہے. جب دنیا پر کورونا کا اتنا بڑا سنکٹ آیا تو بھی بھارت کی ارتھ ویوستھا ٹھپ نہیں پڑی. جب ویسٹ ایشیا کا اتنا بڑا سنکٹ چل رہا تھا تب بھی بھارت کی اکانومی تھمی نہیں. بھارت کی گروتھ میں جو سپیڈ اور سکیل ہے اس کو ایک لائن میں بتانا ہو تو میں کہوں گا 1.4 بلین ایسپریشنز ان موشن.
2: وزیر اعظم مودی کو آج ایک رسمی تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو سے، انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز دا بنتانگ آدیپورن سے سرفراز کیا گیا. وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور اسے بھارت کے عوام کو وقف کیا.
4: سب سے پہلے میں اس گرم جوشی بھرے سواگت کے لیے اپنے متر پریزیڈنٹ پربوو کو ان کا ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں اور آج ان کے آتمیتا بھرے نمنترن پر انڈونیشیا کی یاترا کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. آج صبح مجھے آدر کے ساتھ انڈونیشیا کا سروچ سمان دیا گیا ہے. یہ سمان کوٹی کوٹی بھارت واسیوں کا ہے، انڈونیشیا کے لوگوں کی بھاوناؤں کا ہے.
2: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر ایک تصدیق شدہ پہل ہے جس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فائدے حاصل ہو رہے ہیں. نئی دلی میں وکست بھارت کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے توانائی کی یقینی فراہمی، حصول یابی اور زیر زمین ایندھن کی درآمدات پر انحصار کو کم کرنے کے لیے متبادل بایو ایندھن کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر موصوف نے کہا کہ متبادل ایندھن کے زیادہ استعمال سے آلودگی میں کمی آئے گی، ایندھن کی درآمدات کم ہوگی، دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. جناب گڈکری نے 14 کلومیٹر طویل زوجیلا ٹنل، جموں کشمیر کوریڈور میں 36 سرنگوں، کیدارناتھ روپ وے سمیت اہم پروجیکٹوں اور کشمیر سے کنیا کماری تک وسعت پا رہے سڑک رابطے کو بھی اجاگر کیا جن سے ملک میں کنیکٹیویٹی مستحکم ہو رہی ہے اور ترقی کی رفتار بڑھ رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سیاست سماجی و اقتصادی تبدیلی کی خاطر ایک اہم طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج دلی میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا. اس پہل کا مقصد قومی راجدھانی میں نباتیاتی رقبے میں اضافہ کرنا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد دلی کے ماحولیات کو بدلنا ہے. انہوں نے کہا کہ دلی حکومت نے اس سمت میں مثبت اقدامات کیے ہیں اور 5000 ہیکٹیئر رقبے کو جنگلاتی زمین قرار دیا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اور دلی حکومت نے اگلے 4 سال کے دوران 6300 ہیکٹیئر گرین رج رقبے کو جنگلاتی زمین کے طور پر تیار کرنے اور اس کا تحفظ کرنے کا عزم کیا ہے.
5: ریج کے اندر 70 سے زیادہ تالاب بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ بھی ہوں گے اور یہاں پر جتنی بھی ہماری آرکیولوجی کی سنرچنائیں ہیں اس کو بھی ہم سرکشت کریں گے.
2: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा ज़रई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत, खुशहाल गांव और खुशहाल किसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
6: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
2: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ एक मीटिंग की, ताकि रियासत में विकसित भारत जी राम जी और दीगर देही तरक्याती प्रोग्रामों के नफाज का जायजा लिया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की जेर क्यादत मनसूबों में अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ग्राम चौपाल मॉडल की पेशरफ का भी जायजा लिया, जिससे देही इलाकों में रोजगार पैदा करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी के तहत अब तक राजस्थान को 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाड़ी के करीब एक जेर जमीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोदे खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। जेर जमीन फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मैपाडी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 6 मजदूर अब भी लापता हैं और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमात और कुदरती आफात से निमटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरलम, माहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
7: IMD ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल और तेलंगाना में आइंदा पीर के रोज तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
2: जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज अलसुबह बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने आज उस वक्त बड़ी हुसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के 5वें दिन पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आज सुपहर 3 बजे तक 20,537 यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉ अजय शंकर ने आज कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसअत पा रहा है। डॉ जयशंकर ने आज शाम बहरीन का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया। अपने दौरे में वजीर खारजा ने बहरीन के नायब वजीर आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरीन दोतरफा तआवुन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। शुरुआती इजाफे के बाद घरेलू इशारे आज मनफी रुझान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 104 पॉइंट्स की कमी आई और ये 78,181 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 32 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और ये 24,399 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

0: के मिड कैप 100.3 और स्मॉल कैप 100.5% की गिरावट देखी गई। मर्दों के क्रिकेट में नॉटिंगहम में ट्रेंट ब्रिज में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 आलमी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फीफा आलमी कप में आज रात अटलांटा में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। प्री क्वार्टर फाइनल के एक दीगर मुकाबले में वैंकूवर में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। इससे कबल आज बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमरीका को 4-1 से शिकस्त देकर फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तिसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ngaji akashwani lene shwinchiktain chani chutsot gudam phechaduk kaseta sonam durje tang thopa gune chalkane junglorek sanchesla phulen
2: sha sha sha